नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हर